0: வணக்கம் குழந்தைகளே, இன்னைக்கு நாம கேனு நாம் தாரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒடியா மொழி பாடலை கற்றுக்க போகிறோம். பாடலை எழுதியிருப்பவர் காளிந்தி சரண் பாணிகிரகி. இது ஒரு பக்தி பாடல். இந்த பாடலுக்கு இசை அமைத்திருப்பவர் அக்ஷய்குமார் மோகந்தி. சரி, இப்ப பாடலை எழுதிப்போமா?
1: তুমে যে সর্বনাম
2: তুমে যে সর্বনাম
1: কেউ নাম ধরি ডাকিবি তুমকু
2: ডাকিবি তুমকু
1: তুমে যে সর্বনাম
2: তুমে যে সর্বনাম
0: ইদ পল্লবি ইপ মুদল চরণম
1: আলোক তুমকু
2: আলোক তুমকু
1: নপারে দেখাই
2: নপারে দেখাই
1: তুমি যে দেখাও তাহারে
2: তুমি যে দেখাও তাহারে
1: আলোক তুমকু
2: আলোক তুমকু
1: নপারে দেখাই
2: নপারে দেখাই
1: তুমি যে দেখাও তাহারে
2: তুমি যে দেখাও তাহারে
1: তুমি যে বেড়িছ কোটি বিশ্বর
2: কোটি বিশ্বর
1: সবুরি ভিতরে বাহারে
2: সবুরি ভিতরে বাহারে
1: তুমি যে বেড়িছ
2: তুমি যে বেড়িছ
1: কোটি বিশ্বর
2: কোটি বিশ্বর
1: সবুরি ভিতরে বাহারে
2: সবুরি ভিতরে বাহারে
0: আ ইদুবরিকে নিঙ্গ এড়িগিটাদু মুদল চরণম ইনি রেন্ডাভাদু চরণম
1: লুহা হই তুমি
2: লুহা হই তুমি
1: ঝরি পড় পরা
2: ঝরি পড় পরা
1: কেতে নয়নর কোণরু
2: কেতে নয়নর কোণরু
1: লুহা হই তুমি
2: লুহা হই তুমি
1: ঝরি পড় পরা
2: ঝরি পড় পরা
1: কেতে নয়নর কোণরু
2: কেতে নয়নর কোণরু
1: হস হই পুণি
2: হস হই পুণি
1: ফুল পরি ফুট
2: ফুল পরি ফুট
1: কেতে যে নরম অধরু
2: কেতে যে নরম অধরু
1: হস হই পুণি
2: হস হই পুণি
1: ফুল পরি ফুট
2: ফুল পরি ফুট
1: কেতে যে নরম অধরু
2: কেতে যে নরম অধরু
1: কেউ নাম ধরি ডাকিবি তুমকু
2: ডাকিবি তুমকু
1: তুমি যে সর্বনাম
2: তুমি যে সর্বনাম
0: পাড়ল முழுசா எழுதி முடிச்சாச்சு. ஆறு அக்ஷரம் கொண்ட தாத்ரா தாளத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடல். இப்ப எப்படி பாடுறதுன்னு கத்துப்போமா?
1: 1 2 3 4

0: தொடர்வது ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: குட் ஈவினிங், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி அண்ட் ஐ எம் ஷகுன் சோப்ரா வித் தி நியூஸ் அட் 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज. 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी. 5 साल की स्कीम है. 1 crore per megawatt का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में. प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड